दातारव हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घड़ घड़ अंतर सर्ब निरंतर जी हरे को पुरख सुमाणा

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

मन मैं चितवो चितवनी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत सोहिलारा गौड़ी दिवकी महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कहर कीर्त आखिया करते काहे विचारो तित

मंडल जनक मोती धूप मन आलो पवन चरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खन्ना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत पहेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत नन एक तोही सहस पद बेमल नन एक पद गंध बिनु सहस तब गंध एव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन समय चानन होए

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

ना बुझाए, प्रभु कह सिमरन सब कह सुझाए, प्रभु कह सिमरन नाही जमत रासा, प्रभु कह सिमरन पूरन आसा, प्रभु कह सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद मह समाए, प्रभु जी बस है साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु कौ सिमरह से तनवंते, प्रभु कौ सिमरह से पतवंते, प्रभु कौ सिमरह से जन प्रवान, प्रभु कौ सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभु कौ सिमरह से बेमोहताजे, प्रभु कौ सिमरह से सर्व के राजे, प्रभु कौ सिमरह से

हरे हरे अमृत बरखै भगत जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औख साधक मात हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एक कै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन का मुक्त जुगत हर कै नाम जन का तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जबत कब पर न भंग

अशुभस्त्र मिथ्याराथ हस्ती अशुभस्त्र मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या शिव प्रकृत गोमान अस्थिर भगत साधकी शरण नानक जाप जाप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पार पुकार मिथ्या बास नेद विकार बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी सागद की आर जा साच बिना कह उवत सूचा

देह प्रसाद रिको न पहुते मन साह सिमरह प्रभुते देह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे देह प्रसाद भूखन पहरी जय मन तिह सिमरत क्यों आलस की जय देह प्रसाद असब हस्त सवारी मन तिह प्रभु को कब हु ना बिसारी देह प्रसाद बाग मिलिख तना राग परोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सद तिसे त्याई तिसे त्याए जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रख है देह प्रसाद करहे पुन बवदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान देह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी जेह प्रसाद रा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप जेह प्रसाद रि नीकी जाद सो प्रभ सिमर सदा निराद जेह प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जेह प्रसाद सुनहे करनाद जेह प्रसाद पेखे बिसमाद जेह प्रसाद बोलहे अमृत रसना जेह प्रसाद सुख सहजे बसना जेह प्रसाद हस्त कर चल है जेह प्रसाद संपूर्ण फल है जेह प्रसाद परम गत पावे जेह प्रसाद सुख सहज समावे

संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुषित हरे साध के संग नरक पर हरे।

ते कस बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पार पुकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला।

सिर छतर सगल समग्री अपने सूद धार है नानक जेह जिस भाव है तिह तिह निस्तार कई कोड़ राज तामस सातक कई कोड़ वेद प्राण सिमर तर शास्त्र कई कोड़ किए रतन समुद कई कोड़ नाना प्रकार जंत कई कोड़ किए चरजीवे कई कोड़ गिरी मेर स्वरण थी वे कई कोड़ जाख किनिर पिस

कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तेन होवते आत्म प्रगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोड़ नाम रस पीवे अमृत पह सद सद ही जीवे कई कोड़ नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह सुमावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रावे कहै दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहार ने जल थल मई अल सोए अष्टपदी

अवतार। अनक जतन कार्य आत्म नहीं द्रव्य हर धर गय कह कैसे गवे आपस कव जो भला कहावे तिसे भलाई निकटो नावे सर्ब किरेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लाग जाने मुझते कछ होए तब

संत का दुखी बिग रूप हो जाए, संत के दुखी कव धर गय मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइये, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइये, संत के दुखी की पुजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले ना आसा।

सुखी। एको एक एक पछाने तुत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन माने नानक तिन्हे निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो त्रिसना बुझै। साध संग हर हर जस कहत सर्ब रोग ते ओ अर्जन रहत। अन दिन कीर्तन केवल बुखियान गृहत मह सोई निर्वाण एक उपर जिस जान की आसत।

जिस प्रभु अपन कृपा करे सो सेव कहो किस ते डरे। जैसा सात ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधित सोधित सोधित सीधिया गुर प्रसाद तत् सब बूझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल नह किश जन्मे नह किश मरे आपन चलते आप ही करे आमन जामन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मह आप अनक जुग तरच थाप थाप अविनाशी नाही किज खंड धारन धार ब्रह्मांड अलाख्य पिह पुरख प्रताप आप जपाय नानक जाप

वचन पदार्थ लहे ओहे दाते दुह काटन हार जा कह संग तरै संसार जनका सेवक सोड़ भागी जन के संग एकले लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच गुआ सच है पेहे सच नानक हो सी पेहे सच अस्पति चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार

अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए।

सतगुरु सिख मन नानक भवै न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव हैं दर गए मान पंचे सो हैं दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान। जे को कह करे विचार करते कह करने नहि सुमार तौल धर्म दया का पू संतोख थाप रखिया जनसो। जे को बुझा हुआ सुचार तब लयो पर केता पार धरती होर पराय होर तिस्त पार तला कमण जोर जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया उड़ी कलाम। ए हो लेखा लिख जाना कोय लेखा लिखिया केता होए केता तान सुआल रूप के तेदा जाना कौन कूत किता पसाओ को कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कमण कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुझ पावे साई परिकार। तू सदा सलामत निरंकार असंक जाप असंक पाओ असंक पूजा असंग तप ताओ असंग रनमुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूरमो पाखसार असंग मन ले विलाय तार कुदरत कवण कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई परिकार। तू सदा सलामत निरंकार असंग मूर्ख अंध घोर असंग चोर हराम खोर असंग खमर कर जाहे जोर असंग अलवड़ त्या कमा है असंग पापी पाप कर जा है असंग कुड़ियार कुड़े फिरा है असंग मलेच मल पाख खा है असंग निंदक से कराय पार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुझ पावे साई परिकार। तू सदा सलामत निरंकार।

अंतर्गत तीर्थ मलना सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वासा बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मनचाओ कवन सवेला वखत कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति महा कवन जित हुआ आकार।

केते देव दान मन केते केते रतन सुमंद केतिया काणी केतिया बाणी केते पा नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाल बनोद कोड आनंद स्वर्म खंड के बाणी रो तिथे काड़त कड़िया बहुत अनूप ताकि अगला कतिया ना जाहे देखो कै पिछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरत

करानंद सच्चा मनसो ए सच कण वसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाओ तिथे खंड मंडल वर पंजे को कतै तायंत नायंत तिथे लो लो आकार देव देव कमत्वे तिवकार।

चतचक्रमानीय चतचक्रदानीय चातरी छंद न सत्तरे न मित्रे न परमंग न पितरे न कर्मंग न काय अधर्मगा जाय न चित्रे न मित्रे परे है पवित्रे प्रतिष्ठे अधिष्ठे अदृश्य कृष्य भगवते शांता प्रसाद कथते के अचज देश के अभिज भेस के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभिज लोक के अदोक के अवसुत वर्ण के प्रभुत करने के राजिंग प्रभा के धर्म तुजा है के अशोक वर्ण के सर्वा भरने के जगतंग कृतियों के छत्रंग छत्रिय के भरमंग स्वरूप के अनुपम अनुप के आदि अदेव के आप अपेव के छत्रंग बहन के अधीन के रोजी रजाय के रही मेरे आयके के पाक के क्या बल क्या भय के अपल गना के साहन साह के कारण कुनिंद के रोजी दह दे के राजक रही मैं के कर्मंग करीम है के सर्वंग कलिया के सर्वंग दलिया के सर्वत्र मानी के सर्वत्र दानी के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश केशवत्र राजा केशवत्र साजा केशवत्र दीना केशवत्र लीना केशवत्र जाहो केशवत्र पाहो केशवत्र देसा केशवत्र पेशा केशवत्र काला केशवत्र पाला केशवत्र हंता केशवत्र गंता केशवत्र पेखी केशवत्र पेखी केशवत्र काजा केशवत्र राजा केशवत्र सोखा केशवत्र पोखा केशवत्र त्राण केशवत्र प्राण केशवत्र देश केशवत्र पेश केशवत्र मानिय सदैव प्रधानिय केशवत्र जापिय केशवत्र थापिय केशवत्र पान केशवत्र मान केशवत्र इंद्र केशवत्र चंद्र केशवंग कलीम के परमंग फहीम के आखल अलाम के साहेब कलाम के हुसनल वजुआ तमाम गर्जुआ मेसुल सलाम श्री कुदुम उदाम गनीमल सिकत गरीबल परस्त बिलंदल मकान जमीनल जुमान तमीजल तमाम रजुअल निधान हरिफल अजी मेर रजाय यकीन निकुल रंग भेद भंग है अजीजुल निवाज गनीमल खिरा जैन रुक्त स्वरूप त्रिमुक्त बभूत प्रभुक्त प्रभा सुयुक्त सुधा है सदैविंग स्वरूप भेदी अनूप सम सदोपराध सदा सर्व साध समल सलाम सदैव काम निर्वास स्वरूप अगाध अनूप ओंगाद रूपे अनाश रूपे अनंगी अनाम त्रिपंगी त्रिकाम त्रिभर्ग त्रिभाध्य अगंजे अगाधे सुग सर्वपाग सुसर्वानुराग त्रिभुक्त स्वरूप छिद छूत नरक प्रणास प्रचल प्रवास नृक्त प्रभा सदैव सदाएं भुक्त स्वरूप प्रजुक्त अनूप नृक्त सदाएं भुक्त प्रभा नुक्त स्वरूप प्रजुक्त अनूप चाचरी छंद

के साहेब दिमाग के सुनित्राग कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहिंद के राजक रहिंद करीमल कमाल के उसनल जमाल है गनीमल के राज गरीबल निवाज है हरी फल सिकान हरा सुलभिकान कलंक प्रणास समस्तल निवास है अगंजल गनी मै रजाय करही मैं समस्तल जुबाय के साहेब किरांग नरक प्रणास बेहसल निवास है के सरबल गवान हमें सुल रवान है तमामल तमीज है समस्तल अजीज है परंग परम ईस समस्तल आदेश है आदेश सुला लेख है हमें सुल अपेख है जमीनल जुमा है हमें कुल जुमा है करीमल कमाल है के जुरा जमाल है के अतलंग प्रकाश है के हम तो

सरावक सो समूहान के देख प्रो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सोद सोदा देख संत समूह अनेक मति के सारे देख को देख रहे मत को न देख प्राण पति के श्री भगवान के पाए कृपा उते करती बने करती के माध्यम तंग जरे जर संग अनुपव तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पू पलि बदने।

चीटी ते कुंजरी असुला सप्र कृपा दुष्कर भूला संतन उपाय ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक वीर बछाने।

जेते बदन सिर सब तारै आपे अपने बुझ उचारै तुम सब एते रह निरालम जानत भेद भेद अरियालम।

अंडा जरे सहते किन्ने उतवे खान बोरा दिने कहो फूल राजा वे बैठा कहो सुन पियो शंकर आकेठा सिगरी से सच दिखाया चंबा आद जुगा स्वरूप सियाम बाब अवरचा मेरे तुम करो सिख अबार असिख संगरो दुश्चित उठवत पाता सकल मिलेज करो रण काता जय तो तब सरणी पर तिनके दुष्ट दुखता वै मरे पुरुख।

यह सच सबना का कसमज भक्से सोजन पावे कह नानक सच सुहेला सच्चे कर गावे है। अन सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे।

क्या न ही करती रह करता तीरह सुखी शय जिस देह सुपावय सदा सिप सलाह तीरी नाम मन वसावय नाम जिनकै मन वसिया वजे शुभद कनेरे कह नानक सुखी साहिब।

पंच शब्द तितकर सुभागै कर सुभागै शब्द बाजी कला जितकर धारिया पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागी कै नानक तन सुखुआ तित कर अनहद बाजी।

का जपया जाप। कहाँ करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही। ताकि शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही। बलाबल महला पंजवा सदा सदा जपिया प्रभ नाम। जरा मरा कछ दुख न व्यापै आगै दरगह पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिया नित सरणी गुरते पाइया एह निदान। जन्म मरण की कटिया फांसी साची दरगह का निशान। जो तुम करो सोई भल मानो मन ते छूटे सगल गुमान। कौ नानक ताकी सरनाई जाका किया सगल जहान। बलाबल महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत पर उपकार नित तिस रसना का मोल किछ नाही। रहाओ कुल समूह उदरे खिन भीतर जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद से ती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए भव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हरता के नानक मन लागा है ताही।

वाजे ठाकुर नीच कीट ते करह राजंगा कबू न बिसरै हिये मोरे ते नानक दास ही दान मंगा बलाबल महला पंजमा अचुत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्ब जिया का है प्रतपाल रहाऊ सारण सम्राट।

पतद पावन प्रभ्यर्द बेतमारो हमरे दोख हृदय मत तारो जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही हम मैं पटल कृपा कर जा रहो जल बिहोन मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारो जन नानक प्यास चरण कमलन की पेख दर्श स्वामी सुख सारो बिलावल महला पंजवा आगै पाछै कुशल भया गुरपुरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभ कीनी माया रहाओ मन तन रब रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया सांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खयं गुण अब गुण प्रभ कछ न बिचारियो कर कृपा अपना कर लया अतुल बड़ाई अचुत अबनासी नानक उचरा हर की जया बिलावल महला पंजवा बिन भय भगती तरन कैसे करो अनुग्रह पतत उदाहरण राग स्वामी आप भरोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिर तो मद मावत भिख्या मराता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे सारण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवन जैसे केसव कलेस अनास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर नौवां

रहाउ ताज अभिमान अरचिंत बरानी साधन शरण पए जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खये महामुग्ध अजान अज्ञानी राखे धार दए कहो नानक गुर पूरा भेट्यो आवन जान रहे बलावल महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न भए गुर पूरे ता मेरी आस पुनी रहाओ पीर गई बाधी मन तीरा मोहयो अनद तुनी उपजो चौ मिलन प्रा प्रीतम रहन न जाए खिनी अनक भगत अनक जन तारे सिमरह अनक मुनि अंधले टेक निर धन धन पायो प्रभ नानक अनक गुनी राग बुलाबल मोहल्ला पंजवा घर तेरवा पड़ताल एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवै हावै हार कजर बस्तर अपहरन कीने उडीनी उडीनी उडीनी कब घर आवै री रहाउ सरन सुहागन चरण शीस धर लालन मोहे मलावो कब घर आवै री सुनो सहेरी मिलन बात कहो सगरो अहू मटावो तो घर ही लालन पावो तब रस मंगल गुण गावो आनंद रूप त्यावो नानक द्वारा आयो तो मैं लालन पायो री मोहन रूप दिखावै अब नींद सहावै स मेरी तिखा बुझानी आब मैं सहज समानी

सहाय संतना अब चरण गहे रहाओ। आहे मन अवर न पावे चरनावे चरनावे उलझो अल मकरंद कमल ज्यो। अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अन ते टूटी है रख ते छूटी है। मन हर रस कूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बलावल महला नौवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो। अजा मल गनका जह सिमरत मुक्त पय जी जानो। रहाओ गज की त्रास मिटे छन हूं मैं जब ही राम बखानो। नारद कहत संत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो। अचल अमर निर्भय पद पायो जगत जाहे हैरानो। नानक कहत भगत रक्षक हर निकट ताहि तुम मानो। बलावल महला नौवां हर के नाम बिना दुख पावै भगत बिना सहसा नह चुकै। गुरे हो भेद बतावै रहाओ कहां भयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आवै। जोग जग नह पलत है मानो जो प्रभ जस बिसरावै। मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावै। कौ नानक ए बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावै। बलावल महला नौवां जामै भजन राम को नाही तह नर जन्म अकारथ खोया। जह राखो मन माही रहाओ तीर्थ करै व्रत फन राखै नह मनुआ बस जाको। नह पुल धर्म ताहे तुम मानो साज कहत मैं जाको। जैसे पाहन जल मैं राख्यो भेदा नाहे तह पानी। तैसे ही तुम ताहे पछानो भगत हीन जो प्राणी।

बिन रसराते मुक्त न होई। ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई। मन मुख कथनी है पर रहत न होई, नाबो भूले थाउ न कोई। मन माया बंध्यो सरजाल, घड़ घड़ व्याप रहो बिखनाल। जो अंज सो दिसै काल, कारज सिद्धो हृदय संभाल। सो ज्ञानी जन शब्द लिव लाही, मनमुख हो मैं पत गवाई। आपे करता भगत कराई, गुरमुख आपे दे वड्याई। रैण अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कछोत। वेद पुकार भगत स्रोत, सुन सुन मन वेख जोत। शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ाम, गुरमुख सांत उत्तम कराम। मनमुख जोनी दुख सहाम, बंधन टूटे एक नाम बसाम। मन्ने नाम सची पत पूजा, किस वेखा नाही को दूजा। देख कहो पावे मन सोए, नानक कहे अवर नहीं कोए। बलावल महला पहला, मन का कहया मनसा करै। एह मन पुन पाप उचरै, माया मद माते तृप्त न आवै। तृप्त मुक्त मन साचा पावै। तन तन कलत सब देख अभमाना, बिन नावै किछ संग न जान राहु। कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, धन लोकां तन भसमै ढेरी। खाकू खा कर लै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरा मैल। गीत राग घन ताल से कूरे, त्रै गुण उपजै बिन सह दूरे। दूजी दुरमत दर्द न जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए। धोती उजल तिलक गल माला, अंतर क्रोध पढ़ै नाट साला। नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया। सुकुर स्वान गर्तब मंजारा, पशु मलेश नीच चंडाला। गुरते मोह फेरे तिन जोन पवाईया, बंधन बांध्या आईया जाईया। गुरसेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा किरतार्थ। साची दरगह पूछ न होए, माने हुक्म सीजै दरस होए। सतगुर मिलै ता तिस को जाणै, रह रजाई हुक्म पछाणै। हुक्म पछाण सचै दरवास, काल बिकाल शब्द भय नास। रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अरपै है एहो जिसका। ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए। बलावल महला तीजा अष्टपदी, घर दसवां एक ओ अंकार। सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठ अभमान। बिन नावै पाज लह गनदान, सतगुर सेव नाम बसै मन चीत। गुर भेटे हर नाम चेतावै, बिन नावै हर झूठ परीत। राह गुर कहया साकार कमावहो, शब्द चीन सहज कर आवहो। सच नाए बड़ाई पावहो, आप न बूझै लोक बजावै। मन का अंधा अंध कमावै, दर कर महल ठौर कैसे पावै। हर जियो सेविय अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी। जिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै। आप आप मिला चूकै अभमानै, गुरमुख नाम सदा सदा बखानै। सर गुर सेव्या दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई। कांचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिलिया वड्डी वड्याई। दुख काटै हृदय नाम बसाई, नाम रते सदा सुख पाई। गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार। नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बलावल महला चौथा, अष्टपदियां घर ग्यारवां एक ओ अंकार। सरगुर प्रसाद आप आप खाए हो मिटै, अनदन हर रस गीत गवैया। गुरमुख परचै कंचन काया, निरपो ज्योति ज्योत मलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पिल रह न सको बिन नावै। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया, रहाऊ
ਏਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਨਸ ਤਸ ਕਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਸਭ ਹੈਰ ਲੈ ਜਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਲੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਈਆ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਬਹੁ ਮਾਣਕ ਭਰਿਆ ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਤਤ ਲਿਭ ਲਈਆ ਤਸਕਰ ਹੇਰੂ ਆਏ ਲੋਕਾਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਗੜ ਬੰਧ ਪਈਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੋਤ ਬੋਹੇ ਥਾ ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪਾਰ ਲੰਘਈਆ ਜਮ ਜਾਗਾ ਤੀ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤੇ ਅੰਤ ਨ ਲਹੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਇਕਤ ਘਰ ਆਵੈ ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਈਆ ਨੈਨੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਰਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਈਆ ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੈ ਭੀਨੇ ਰਸ ਰਸ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਵਈਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਬਿਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੀਆ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲੱਖ ਲਖਈਆ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਈ ਹੈ ਭਗਤ ਪਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲੱਖ ਲਖਈਆ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਭਗਤ ਭਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

नानक तुमरी कृपा तराय संग सुहाई सो आवे न चीत जो बहराई ता स्यो प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर बस अणद किल माया रंग रस दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत काल ने आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोह त्रो अहं जूत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म।

जस रसन बुखानै। जय प्रसाद तिरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जपत दरगे मान पावे, नानक पात सेती घर जावे। जय प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभु तांक। जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे, मन सा सा सिमरो प्रभुचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आपूखन पैरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्ते असवारी,

सुन मीता नानक बिनवंता साध जना किया चरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटे अभिमान।

अनंत साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूझते मूची साध की शोभा साध बने आई।

रचना कई कोटा सिद्ध जति जोगी कई कोटा राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर पे उपाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोटा पवन पानी बै संतर कई कोट देशभू मंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानविंदर सिर छतर सगल समगरी अपने सूत धारे नानक जिस जिस भावे तिस तिस निसतारे कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट कीर्तन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीव कई कोट गिरी मेर स्वरन थीव कई कोट जख किन्नर पसाच कई कोट भूत प्रे सूकर मृगाच सब ते निर सबहू ते दूर

तिसु भाव है सोई फुन थियो। कबू च नीच मैं बस कबू सो घर खरंग हस कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकास प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक मिलावन हार। कबू निरता करे बपात कबू सोए रह दिन रात कबू मां क्रोध बिकदाल कबू सर्व की होत्रवाल कबू होए बह बड़ राजा कबू पिखारी नीच का साजा। कबू अब कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिवही रह गुर प्रसाद नानक सच कह। कबू होए पंडित करे बखियान कबू मुण धारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त बतंग जियान कजून भरमे परमैया। नाना रूप ज्यों सुहागी दुखावे ज्यों प्रभ पावे तिवें नचावे जोत सुभावे सोई होए नानक दूजा वरना कोय। कबू सात संग त्यो पावे उस स्थान ते बहुर न आवे

कानिंद परमेश्वर महाराज, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीना, संत के निंदक को सर्व रोगा, संत के निंदक को सदा बिजोगा, संत की निंदा दुख में दोखा, नानक संत भावे तांस का पियो मोखा, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मेता, संत के दुखी को डाण लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महाहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मलाए, संत का दुखी आद बीते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचाए, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास मना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किशनाए, अपन बीज आपे ही खाए, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार, संत का दुखी यूं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पाव की दिन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुबार तिल खेत मैं दुहेला, संत का दुखी धर्म तेरा तु, संत का दुखी साध मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुरी पया, नानक जो तिस पावे सोई थे आ, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाय, संत के दुखी को दरगह मिले सुजाय, संत का दुखी सदा सहकाये, संत का दुखी ना मरे ना जीवाये, संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी हट चले निराशा, संत का दुख ना त्रिटे कोय, जैसा पावे तैसा कोई होय, पै किरत ना मेटे कोय, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिस क्यों करने जो हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गुरास, सब काछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आव करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनू कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से श्लोक, तजो से आनप सुर जनाओ सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय, इष्टपदी मानो की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रह गाय, बोर न तृष्णा लागे आए, मारे राखे को आप, मानो कह किस नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगड़ न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लै जियो, नैनो पेखा ठाकर का रंग, सात संग बिन से सब संग, चरण चलो मार गो बेंदा, मिटे पाप जपी है हर बेंदा, कर हर कर्म सरवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, मडभागी ते जन जग माए, सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मान तन मुख बोले यार मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछान है, तुत की सोजी जान है, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिनय निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सुजाए, तिसकी जानो तृष्णा बुझाए, सात संग हर जस कहत, सर्व रोग ते हर जन रहत, अनदिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्भान, एक ऊपर जेह जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूखा, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चेते आवे, सो संसुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृढ़ आया, अपने कार्ज में आप

सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरत साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच सम

जिस हो वह सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्राह्मण में राख मानो की तू प्रीत आग तिस्ते परे नाही किश कोए सर्व निरंतर को सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंदा कृपा दान दयाल बगसांद सा तेरे की चरणी पाओ नानक कह माने हो अनराओ मनसा पूर्ण सरणा जोगा जो कर पाया सोई होगा।

अनंद रूप मंगल सद जांक सर्ब थोक सुनिए कर तांक राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपी सर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भगतें सुख पाया नानक तिस पुरख का कने अंत न पाया जांकी लीला कीमित ना है सगल देव हारे अवगा।

सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरिये संसार बिन भगति तन हो सीचार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का उवत नास नानक नाम जपो गुणतास।

विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास, कहो किस होए जब भगत्या गोचर प्राबेका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन या गोचर या गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे।

आई तब कवन माए बा मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीना तै वेदक तेव का चीना जब अपना पापुर धारे तो सगन अब सगन काम बिचारे जे अपने ऊचे अपने आप नेरा ते कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद अपनी नानक अपनी गत जानो आप बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अशे दे अभेद सुमाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश तय गुण का नाही प्रवेश जय कह के क्या भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपना पापति आरा ते कौन कथे कौन सुनने हारा बह बंतु जते उचा नानक उसको आपे पहुंचा जय ब्रचो प्रपंचो कार तह गुण में कीनो बसथार पाप पुन ते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह भरम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच नानक कह जय भगत भगत तयाप जय पसरे प्रसाद जय पसरे पासार संत प्रताप धू पा कापे धनी उनकी शोभा नु बनी आपे कौतिक करे आनंद चो जा आपे रस भोगन निरजोग जिस भावे तिस आपन नै लावे जिस भावे तिस खेल खुला